करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहे आ। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहे आ। सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले। वाजी तेरे नाद अनेक संखा किते तेरे वावन हारे। किते तेरे राग परिस्यों कही यह किते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारी। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले। गावन तुदनो रतन पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते तुदनो गावन से मैं चितनावन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला।

किन्हें न पाइया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाइया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सुवारन हारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, पुत भूख खाई चली यह दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए, रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई, आख तक के कीमत नहीं पाई, जे सब मिल के आखण पाहे, वड़ा न हुवे काट न जाए, ना उह मरे न हुवे सूग, देदा रहे न चूके भोग, गुण एहु होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके

तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्या वह हर त्या वह तुद जी, से जन युग में सुखवासी, से मुकत पहे जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहुसिमृत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा।

सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर्व रड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूण मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या, बूरक मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, पही प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे के।

रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। बुंदावनी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सरदारो। जे को खावे जे को पुंचै, किसका हुए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक।

तुम मात पिता हम। कोई न जाने तुम्हारा अंत उचे ते सगल समग्री तुम्हारा सूत्र

0: प्रभु के सिमरन निश्चलयासन
1: प्रभु के सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमरह सेजन जिनको प्रभु मया
1: नानक तंजन सरणी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीचो गुण जाते
0: हर सिमरन तारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकारा
0: हर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द

0: अष्ट पदी
1: जय मात पिता सतमीत न भाई
0: मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई
1: जय महाप्यान दू जमदल
0: तह केवल नाम संग तेरे चले
1: जय मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम किन माहे उधारी
1: मन पुने चरण करत नहीं तरे
0: हर को नाम कूट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जप मन मेरे
0: नानक पाव सुख कनेरे
1: सगल सृष्ट को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत हो सुखिया
1: करोड़ी बंद पर
0: हर का नाम जपत निस्तर
1: मन कमाया रंग तिक ना बजावे
0: हर का नाम जपत आघावे
1: मार्ग हुजात केला
0: तै हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याई
0: नानक गुरमुख परम कत पाई है
1: कुछ नहीं कोट लकवाई
0: नाम जपत तह पार पराही
1: अनक विघन जय आए संगारे
0: हर का नाम तत्काल उदार है
1: अनक जून जन्मे मर जाम
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: ओ मैला मल कबू न तोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
0: नानक पाइये साध कै संग
1: जे मार के गने जाए न कोसा
0: हर का नाम उहा संग तोसा
1: जे पैणे मां अंध गवारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: जहां पंतरा को ना सियानु
0: हर का नाम तह नाल पछानु
1: जय महाप्यान तप्त बो काम
0: तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम
1: जहां त्रिकावन तुझे अकर कै
0: तै नानक हर हर अमृत बरक है
1: संत जना की वर्त नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर कै नाम उदरे जन कोट
1: हर जस कर समद रात
0: हर हर औकद साध कमात
1: हर जन के हर नाम निदान
0: पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मंत्र रंग रते रंगे कै
0: नानक जन कै बिरत विवेक
1: हर का नाम जन को मुगत जुगत
0: हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत कब परे न भंग
1: हर का नाम जन की वड़ियाई
0: हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत कछ नाहि बियोग
1: जन रता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर जन के मालक जीना
0: हर धन जन को आ प्रभु दीना
1: हर जन के ओट सतानी
0: हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर रस राते
0: सुन समाध नाम रस माते
1: आट पैर जन हर जपे
0: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
1: हर की भगत मुद वो करे
0: नानक जन संकेते तरे
1: हर जाते हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रद वसे
0: संत प्रताप दुर्त सब नसे
1: संत का संग बड भगी पईए
0: संत की सेवा नाम ते आईए
1: नाम तुल कछ अवर ना होए
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति देखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हर नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: हर शास्त्र सिमरत ज्ञान
0: योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सगल त्याग मन मध्ये फिरिया
0: अनेक प्रकार किए वह जतना
1: उन दानों में वह रतना
0: शरीर कटाए हम मैं कर राती
1: वर्त नेम करे वह पाती
0: नहीं तोल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए कवार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
1: दास विसर
0: अग्न माहे हुमत प्राण
1: कन कै सु है वर भूम दान
0: न्यौली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संजम साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तोली होमे मैल न जावे
0: हर के नाम सम सर कछ नाहि
1: नानक गुरमुख नाम जत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुटे
1: कर गुमान न मन ते उठे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तन ते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कबू न विख्या टरे
0: जल तो वह बुद्धे अनीत
1: काची भीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पत मूच
0: बहुत सियान पजम का भव व्यापे
1: अनेक जतन कर तसन ना त्रापे
0: पेश अनेक अगन नहीं बुझे
1: कोट पाप दरगे नहीं सजे
0: छूट सना ही ऊपयाल
1: मोहे व्यापे माया जाल
0: अवर कर दू सगली जम डाने
1: गोविंद भेन मन तन नहीं माने
0: हर का नाम जप दुख जाए
1: नानक बोल ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ
0: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ
1: ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ
1: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੇ ਸਰਗਾਵੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ
1: ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਮੈਂ ਚੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ
0: ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ
1: ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਲ ਜਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਸਮਝਾਕਾ ਮਿਟੇ ਮਾਨ
0: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ
1: ਤੂੰ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨ ਘਟ ਘਟ ਜੀਨਾ
0: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ
1: ਸਗਲ ਸਰਿਸ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਲੈ ਪਾ
0: ਨਿਰ ਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ
1: ਤਾਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰੋ ਤਾਉ
0: ਨਿਮਾਣੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ
1: ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ
1: ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਆਪੇ
1: ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
0: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਔਰ ਅਣਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ
1: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
0: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਮਤ ਮਲ ਹਰਿਆ

0: पावै पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे,
1: एक वस्तु कारण विकोट गवावे,
0: एक पी ना दे दस पीर ले,
1: तो मुड़ा को कहां करे,
0: जिस ठाकुर से ना

0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,
1: कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया,
1: मिथ्या होमे ममता माया।
0: मिथ्या राज जीवन धन माल,
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा,
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता।
0: मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान,
1: मिथ्या अपजू प्रकट गमान।
0: अस्थिर भगत साध की शरण,
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
1: मिथ्या पर दर कोहरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद,
1: मिथ्या रसना भोजन स्वाद।
0: मिथ्या चरण पर विकार कौता वह,
1: मिथ्या मन पर लोभ लोभावे।
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा।

0: तुम पानी तिन प्रभ जाता
1: नानक उन जन प्राता
0: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया पे मन
0: आप है आप, आप करत नबेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: भाव से अनुप सगल ते रहत
1: सब जाने आत्म की रहत
0: जिस भाव है तिस लय लड़ लाए
1: कौन तन अंतर रहा समाए
0: सो सेवक जिस कृपा करी
1: निमक निमक जाप नानक।

0: कष्ट भरी।
1: हे प्रसाद शक्ति अमृत खाए,
0: इस ठाकुर को रख मन मारे।
1: हे प्रसाद संगन तल लावे,
0: इसको सिमरत परम गत पावे।
1: हे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: सहत्याय सदा मन अंदर।
1: हे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: हे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्या ये त्यावन जोग।
1: हे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
0: सहत्या कतवर लुभावे।
1: हे प्रसाद सुख से सुविजय,
0: मन आठ पहर ताका जस विजय।
1: प्रसाद सबको माने,
0: मुक्ता को जस रसन बखाने।
1: प्रसाद रहता धर्म,
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जब दर गए मान पावे,
0: नानक पद छेती कर जावे।
1: हे प्रसाद रहो कंचन देही,
0: देव लावो तिस राम सने।
1: हे प्रसाद तेरा उल्ला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: हे प्रसाद रे सगल सिदर ठाके,
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
1: हे प्रसाद तुझको ना पूछे,
0: मन सास सिमरह प्रवयुचि।
1: हे प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
0: नानक ताकी भगत करे।
1: हे प्रसाद आपूखन पैरी जे,
0: मंति सिमरत क्यों आलस की जे।
1: हे प्रसाद अस्वस्थ सुवारी,
0: मंति प्रभु को कबू न बिसारी।
1: हे प्रसाद बाग मलक तना,
0: राग प्रवे प्रवे अपने मना।
1: दिन तेरी मन बंत बनाई,
0: उठत बैठ सत सहते आई।
1: सहते आए जो एक लखे,
0: इहां उहां नानक तेरी रखे।
1: हे प्रसाद करे पुन मोदान,
0: मन आठ पैर कर तिसका त्याग।
1: हे प्रसाद तू हां चार बिहारी,
0: प्रभु को साथ साथ चितारी।
1: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
1: हे प्रसाद तेरी निकी जात,
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: हे प्रसाद तेरी पत रहे,
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: हे प्रसाद सुने करनाद,
0: हे प्रसाद पिक है विस्माद।
1: हे प्रसाद बोले अमृत रसना,
0: हे प्रसाद सुख सहज बसना।
1: हे प्रसाद हस्त कर चले,
0: ये प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: ये प्रसाद
0: परमगत पावे,
1: परमगत पावे।
0: ये प्रसाद सुख सह समावे,
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो।
0: गुरु प्रसाद नानक मन जागो,
1: ये प्रसाद तू प्रगट संसार।
0: इस प्रभु को मूला मनो विसार,
1: ये प्रसाद तेरा प्रताप।
0: श्रीमन मूर्तता को जा।

0: सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना
1: की चर्ज कथा
0: अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत
1: साध संग मल सगली कोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग परटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभु नीरा
1: साध संग सब होत निवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संगे कुपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा प्रफुल
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग मत रस पंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग सत मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध

0: साधक संग न मंत्र विसरे
1: तो संग सतपुरन स्तरे
0: साधक संग लग गए प्रभु मीठा
1: साधु के संकट कर डीठा
0: साध संग भया क्या कारी
1: साध संगत भई हमारी
0: साधक संग मिटे सब रूप
1: नानक साधु के नानक साध साधक मिटे सर नानक साध पिटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
1: देता सुने देता वकियाने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही परपूर
0: साध की शोभा का ना ही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची
1: साध की शोभा मूचे मूची
0: साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप
0: जैसे जल में कमल अलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक
0: जैसे सूर सर्व कौशोक
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे को
0: क्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का योग नाओ
0: नानक क्यों पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जलाओ
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास
0: जैसे तारु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के ना ही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
0: मन अपना है सबसे नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: नानक जिन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के चिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बुट भागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मारे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या न जाए दाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी
0: कि मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता।

0: सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत निंदस
0: अर्त्रय रूप न पिख नित्र
1: सार की टहल संसंगेत
0: करना सुने काहू की निंदा
1: जाने आपको मंदा
0: गुरु प्रसाद बिख्या पर हर
1: मन की वासना मनते तर
0: इंद्री चित पंच दुख ते रहत
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विषम की माया ते भिन्न
0: कर्म कर तो हुआ नहीं कर्म
1: उस वैष्णो का निर्मल
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भक्त कीर्तन संग्राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब प्रभुवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मन ते बिन सह सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सा संग पापा मल खूवे
1: भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे वसन
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रभु
1: राम नाम आत्म में सोदे
0: राम नाम सारस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो ना आवे
0: वेद प्राण सिमृत बुझे मूल
1: को मैं जाने सूल
0: चौवरना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौवरना में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए
1: सा संग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंतर उरतार है
1: बस प्रेर मुगत पात्र को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत किते न पाइए धर्म
1: नानक दस मिले जिस लिखिया दुर्कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तन पाया
0: सदा निकट

0: नानक तिस बलिहारने जल थल मई अल सोई अष्टपदी करन करावन करने जोग
1: जो तुस भावे सोई होग
0: किन मैं थापु थाप नहारा
1: अंत नहीं किच पारा वारा
0: हुक्मे तार तार रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्मे अंतरंग प्रकार
0: कर कर दिखे अपनी वडियाई
1: नानक समे रिया समाई
0: रब पावे मानुख गत पावे
1: रब पावे ता पात्र त्रावे
0: रब पावे बिन सास दे रखे
1: रब पावे ता हर गुण पाके
0: वैसा पथ सुधारे
1: आप करे अपन विचारे
0: दुहा सिरिया काप सुआमी
1: खिले विकसे अंतर जामी
0: जो पावे सुकार करावे।

0: कलेष्ट परी।
1: जिसके अंतरराज मान
0: सो नरक पाती होवत स्वान,
1: सो जो जाने में जो बुनवंत,
0: सो होवत विष्टा का जंत,
1: आप उसको कर्म बंत कहावे,
0: जन्म मरै बहु जोन प्रमावे,
1: तुम का जो करे गमान,
0: सो मूर्खन दा ज्ञान,
1: हर कृपा जिसके हृदय गरीबी विसावे,
0: नानकी हां मुक्ता गै सुख पावे,
1: तो एक कर करवावे,
0: तृण समान का संग न जावे,
1: लस्कर मान ऊपर करे आस,
0: बल भी करता का हुए विनाश,
1: सबसे आप जाने बलवंत,
0: किन मैं हुए जाए पसमंत,
1: कृष्णावदे आप ओंकारी,
0: धर्म राय तिस करे खुआरी,
1: ऊपर सा जा का मिटे मान,
0: सो जन नानक तर कै परवान,
1: कोट कर्म करे हो तारे,
0: श्रम पावे सगले बिरथारे,
1: तपस्या करे अहंकार,
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार,
1: अनक जतन कर आत्म निंद्रवे,
0: हर दर को कैसे कवे,
1: आप उसको जो भला कहावे,
0: से भलाई निकट न आवे,
1: सर्व की रेण जा का मन होए,
0: कब नानक ताकि निर्मल सोए,
1: जब लोग जाने मुझते कुछ होए,
0: तब इसको सुख ना ही कोए,
1: जाने में कुछ करता,
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता,
1: जब तारे को बैरी मीत,
0: तब लग नेचर ना ही चीत,
1: जब लग मोह मगन समाए,
0: तब लग धर्म राय देश जाए,
1: कृपाते बंधन टूटे,
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे,
1: ठेस कटे लकोट सावे,
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे,
1: अनक भोग विख्या के करे,
0: ऐ तृप्तावे खप खम मरे,
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे,
1: नाम रंग सर्व सुख होए,
0: बड़ भागी किसे प्राप्त हुए,
1: करण करावण अपे आप,
0: सदा सदा नानक हर जाप।

0: केवन को एक है भगवान
1: जिसके दिए रहे गाये
0: पवन तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे को आप
0: मानु कह किसना ही आत
1: जिसका कुमुश कोए
0: जिसका नाम रंग कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में करनकार
0: करमन मेरे सद व्यवहार
1: निर्मल रचना मत पियो
0: सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो भेग ठाकुर का रंग
0: सा संग विंत है सब संग
1: चंचलो मार गोविंद
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: कर हर कर्म शर्म कथा
0: हर दरगे नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: इको एक एक बछाने
0: इतुतकियो सोजी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने
0: नानक तिन निरंजन जाने
1: प्रसाद अपना सुजे
0: इसकी जानो तृष्णा बुझे
1: साध संग हर जस कहत
0: सर्व रूप त्यो हर जन रहत
1: आनंदन कीर्तन के लोक ज्ञान
0: कृष्ण में सोई निर्वाण
1: एक उपज जन की आशा
0: इसकी कटिया जम की फासा
1: की जिस मन भूख
0: नानक किसे न लागे दुख
1: जिसको हर प्रमन
0: सो संत सुहेला नहीं डुलावे
1: अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा साथ ऐसा दिष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदो सोदो सोदो सीजिया
0: गुरु प्रसाद सब उजिया
1: जब देखो दस कुछ मूल
0: नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: जन्मे न कुछ मरे
0: अपन चलता ही करे
1: पावन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सकल में आप
0: अनिक जुगत रचता प्रताप
1: अविनाशी नाही किछ कांड
0: तारन तारे हो ब्रह्मांड
1: पे पुर प्रताप
0: आप जपाए दा नानक।

0: सबज पहे निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: विष्णु कृपा करह बड़ पागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुर को उत्तम कर्मान
1: जो किछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बचै हर संग
1: सह सो आए होवे सोए
0: करने हर पछाण सोई
1: रका किया जन मीट लगाना
0: जैसा सत है सा दृष्टाना
1: जिस देव जे दसमाए समाए
0: ओए सुख निदान।

0: आपन किया कछु न होए,
1: जेसो प्राणी लोचे कोए,
0: इस बिना ही तेरे किस काम,
1: गत नानक जपे कर नाम,
0: रूपवंत हुए ना ही वो है,
1: रखी जोल सगल कट सोए,
0: धनवंता हुए क्या को गर्व है,
1: सबके सिका दिया दरवे,
0: असुरा जी को कहावे,
1: रखी कला बिना कहता वे,
0: जिनको हुए वह दातार, किस देन हम जाने का वार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग,
1: नानक सो जन सदा रोग,
0: जो मंदिर को थम मैं थमन,
1: त्यों गुरु का शब्द।

0: अनेक बेगंते साधु रखे
1: ओठ ब गई संत साध संग की
0: हर गुण गाय अमृत रस चाखे ऊट गई संत दरियाया
1: सर्व सुख नानक तै पाया
0: मृत को जीवालन हार
1: भूखे को देवता द्वार
0: सर्व निदान जा की दृष्टि माहे
1: पूर्व लिखे का लेना पाए
0: साध किस का

0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: जने आवे हर पग जीत
0: भगत पग सुनिए तिहु लोए
1: जाके हृदय कोए
0: सच करनी सचता की रहत
1: सच हृदय सतमुख कहत
0: साची दृढ़ सचाय आकार
1: सच वरते सचा पासा
0: आर ब्रह्म जिन सच कर जाता
1: नानक सो जन

0: धर्म निरंतर एक सोई
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बख्शंद
1: सा तेरे की चरणी पाओ
0: नानक कै मन हो अनुराओ
1: मुनसो।

0: गर्भ तोक सुनी है करता कह
1: राज में राज योग में जोगी
0: तप में तपिस्तर कृष्ण में भूखी
1: त्याय त्याय भक्त सुख पाया
0: नान तिस पुरख का किन अंत न पाया
1: जाकी लीला की वंदना है
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: सगल पुर
0: पिता का जन्म
1: जाने कूत
0: सगल पुरो अपने सूत
1: समत ज्ञान ध्यान जन दे
0: जनदास नाम त्या वैसे
1: में जाको परमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: पूज नीच इसके आसान
0: ऐसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पे करे करंग
1: नाना विद कीनो विस्तार
0: प्रभ वनासी एक अंकार
1: नाना चलत करे गिन माए
0: पूरे हो पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत
0: अपनाई अपनी कीमत पे पाई
1: सब कर तिसके ओ तिसके और सब
0: कर तिसके सब तिसके ठाउ जब जब जीवे नानक हर नाउ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद प्राण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगला कार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जैसे अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सूजन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सज्जा की वाणी
0: सत पुरख सब माहे सुमानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: संत करनी निर्मल निर्मली
0: इसे बुझाए किसे सफली।

0: चरण सत सत परसनहार
1: पूजा सत सत सत सेव सत पेखनहार
0: पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार
1: नाम सत सत्य अवनहार
0: आप सत सत सवतारी
1: आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जसंता
0: जिनहार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन
1: माने तन मूल पचानिया
0: जाकर हृदय विश्वास पर भी आया
1: सत ज्ञान तिसमन प्रगटाया
0: भय ते निर्भउ होए प्रसन्ना
1: जिस देव जे तुस माए सुमन
0: बस्त माहिले बस्त गढ़ाई
1: ताको भिन्न गणा जाई
0: पूजे पूजन हार विवेक
1: नारायण मिले नानक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग।

0: सास समारे,
1: अपने जनका पर दाटा कह,
0: अपने सेवक की सर पर रखे,
1: अपने दास को दे बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक किया पत रखे,
0: ताकि गर्मित को इन रखे,
1: प्रभु के सेवकों को न पहुँचे,
0: प्रभु के सेवको न ऊंचे ऊंचे,
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दह दिस आया,
1: निकी कीरी में कल रखे,
0: पसम करे लस्कर कोट लाखे,
1: इसका सास न काटता,
0: राख देख रहा
1: मानस जतन करत बपात,
0: तिसके कर्तव्य

0: अष्टपति
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक को गुर सदा दयाल
1: सिख की गुरदर मत मुल रे
0: गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख विकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम तन दे
0: गुर का सिख वट भागी हे
1: सतगुर सिख को अलत पलत वारे
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारे
1: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आपस गो कर कछ न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सत्यावे
1: मन विच सतगुर के पास
0: जी सेवक के कार्य रास सेवा कर
1: तो न कमी
0: इसको ओत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जैसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: विश्वेश्वर गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस दे अनो
0: अनेक बार गुर को बल जाओ
1: सरुणान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग रहता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: के आप नहीं कछ परम
1: ऐसे अनपले न जाइए
0: नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है
1: सबल दर्शन पेगत पनीत
0: परसत चरण गत निर्मल रीत
1: पेट तो संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दर गह गवे
1: सुनकर वचन कर्न गाने
0: मन संतोख आत्म पति आने
1: पूरा गुरु क्यों जाका मंत्र
0: अमृत दृष्टि पेखे हुए संत
1: गुण बेअंत की उन्द नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिसलै मिलाए
1: हे भाई गुस्त अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: आओ बोल न पोच प्राणी
0: अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहा निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: मानक भगत बंधन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरह
1: साधु बलिहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: एहो अरस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे
0: जाके मन प्रगटे गुण तास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश सेवक को

0: अनंत भया दुख न ठे भाई,
1: जन्म मरण के मिटे देसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेशे,
1: पौचुका निरपाय वसे,
0: सगल व्याध मंति खै नसे,
1: जिसका साथ इन कृपा धारी,
0: सा संग जप नाम मुरारी,
1: हित पाई चुके परम गवन,
0: सुन नानक हर हर जस श्रवण,
1: निर्गुण आप सगुण भी आई,
0: कला तार जिन सगली मोही।

0: सरस्वती संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम उदार
0: और उपासम बीच विचारो
1: कर्ण कमल हृदय उतारो
0: कर्ण काल सुप्रभ समरथ
1: दृढ़ कर गवो नाम और बत
0: देवतान संचो हो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन वाहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: इस तन को चार कुंट टूटता वे
1: सो तना सेवा ते पावे
0: सुखो नित बाचे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: शोभा को करे भली करनी
1: सा शोभा पजर की सरणी
0: अनिक पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे रोग बदलाए
0: कर्म निदान मैं हर नाम निदान
1: जप नानक दरगे परवान
0: मन प्रभु तू हर कहनाए
1: मैं जिस सावत आवे ठाए
0: काकु बिघन न लागे कोई
1: जाकर दे बसे हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: अविन से पूर्ण हो आस
1: भगत पाए आत्म प्रगास
0: चित कर जाए बसे अविनाशी
1: तो नानक कटी जन फासी
0: सत विचार कहे जन साचा
1: जन्म मरे सो काचो काचा
0: आवागमन मिटे प्रसेव
1: आप त्याग शरण कर देव
0: यो रतन जन्म का हुए उधार
1: हर हर सिमरन प्राण उधार
0: अनेक भावना छुटन हारे
1: सिमर शास्त्र वेद विचारे
0: हर की भगत करहो मन लाए
1: मन वंचित नानक बल पाए
0: कंगना चालुष ती रतना
1: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
0: तुत मीत कुटंबर बनता
1: ते को तुम कमन सुनाता
0: राज रंग माया विस्तार
1: ते को कमन छटकार
0: असहस्ती रथ सुवारी
1: ठाडम झूठ उतारी
0: इंदी ये तुझ बुझे न बिगाना
1: ना विसार नानक विस्ताना
0: गुर की मत तू ले आने
1: भगत बिना वो डूबे सियाने
0: हर की भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो जीत
0: चरण कमल रखो मन भाई
1: जन्म जन्म के कृप जाए
0: आप जपो अवरा नाम जपावो
1: संत कह रहत गत पाओ
0: सार भूत सत हर को नाओ
1: सह सो है नानक गुण गाओ
0: गुण गावो तेरी तुस मैल
1: बिन्स जाए हो मैं बिकवैल
0: ओहे चिंत बसे सुख नाल
1: सास ग्रास नाम समाल
0: चार सियान सगली मना
1: सास संग पावे सजना
0: हर कुंजी संच करो बिहार
1: यहाँ सुख दर गए जयकार
0: गर्म निरंतर एको देख
1: कौ नानक जाके मस्तक लेख
0: एको जापे को साला है
1: एक सिमरे को मना है
0: एक इसके गुण गाओ अनंत
1: अंतन जाप एक वो अंत
0: एको एक एक हर आप
1: पूर्ण पूर्ण प्रभु दया
0: अनिक विस्तार एक दे पे
1: एक राज प्राच गए
0: मंत्र अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक जाता श्लोक

0: मन भिक्षा साध चरण तो भी
1: भक्त जना के मंत्र रंग
0: बिरला को पावे संग
1: एक वंश दीजिए कर्म मया
0: गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही ना जाए
0: नानक रहा सर्व समाये
1: बख्शान दीन दयाल
0: भक्त वचन सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व कटा कर्त प्रतपाल
1: नाथ पुर कारण करता
0: भक्त जना के प्राण आधार
1: जो जो जपे सोए पुनीत
0: भक्त पाए लावे मन ही
1: नीच जान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर विकुंड मुक्त पाए
0: एक निमकर के गुण गाए
1: राज को उड़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का प्रसंगीत
0: रचना जपती हर हर नीत
1: सो करनी शोभा।

0: अष्टपदी जब अकार यो कछ न दृष्टिता
1: पाप पुन तब कह रहे होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: पैर विरोध के संकमात
0: जब इसका वर्ण चिह न जापत
1: सब हर शोक किसे व्याप्त
0: जब अपन आपा पार ब्रह्म
1: तब मोह काम किशोवत परम
0: अपन खेला वर्ती जा
1: नान करने यार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: अपन मुक्त को किसको गनी
0: जब एक कह रगम अपार
1: को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए।

0: सम्मान अपमान
1: अन प्रकार कियो विज्ञान
0: अपन खेला पर देखे
1: खेल संकोचे तो नानक कह
0: जय अभिगत भगत है आप
1: प्रसार संत प्रताप
0: दूपा काया पे सनी
1: उनकी शोभा अनुमनी
0: आप कौतुक करे आनंद चोज
1: आपे रस भोज

0: दुख दर्द मन ते पहु जाए।
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: कर गहन है केप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन मह,
0: नानक बहर नया वह जाए,
1: तैसे दूर कहाँ को जाए,
0: प्रह रखन हार त्याए,
1: नर पाव जप सकल पाव मिटा,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे,
1: जद प्रभ रखा तस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटे अहंकार,
0: जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्य पूरा,
1: मात पूरी अमृत जागी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत कुदरत श्रेष्ठ,
1: चरण कमल।

0: निश्चन सो जी पाए,
1: सो अंतर सो बाहर अनंत,
0: कट कट व्याप रहा भगवंत,
1: कारण मैं आकाश प्याल,
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल,
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म,
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म,
1: कौन पानी बह संतर माही,
0: चार कुंट दह दिशे समाही,
1: इससे पिन नहीं को ठाओ,
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ,
1: वेद प्राण सिमरत में देख,
0: सस्य सूर नखियत्र में एक,
1: वाणी प्रभु की सबको बोले,
0: आप डोल न कब हूँ डोले,
1: सर्व कला कर खेले खेल,
0: बोल न पाइये गुने अमोल,
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत,
0: तारे हो स्वामी ओत पोत,
1: गुर प्रसाद परम का नास,
0: नानक तिन में इहो विश्वास,
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
0: संत जना के हृदय सब धर्म,
1: संत जना सुनो सब वचन,
0: सर्व व्यापी राम संग
1: जिन जाता पिसकी रहत,
0: सत वचन साधु सब कहत,
1: जो जो होए सोई सुख माने,
0: कर्ण करावन हार प्रभु जाने,
1: अंतर बसे बार भी योही,
0: नानक दर्शन देख सब मोही,
1: आप सत किया सब सत,
0: इस प्रभु ते सगली उत्पत,
1: पावे ता करे विस्तार,
0: इस पावे ता एकंकार,
1: तन कला लखी ना जाए,
0: जिस पावे तिसलै मिलाए,
1: कवन निकट कण कहिए दूर,
0: आपे आपा पर कुपूर,
1: अंतर गर्दिस आप जनाए, सर्व पूत आप वरतारा,
0: सर्व नैना पिखन हारा,
1: सगल समग्री जाका तना,
0: आपन जस आप ही सुना,
1: आवन जाने खेल बनाया,
0: आज्ञाकारी की नी माया,
1: सबके मद लिपित रहे,
0: जो किस कहना सु आपे कहे,
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
0: नानक जा पावे ता ले समाए,
1: इससे होए सो नहीं बुरा,
0: ओरे कहो किने कछ करा,
1: आप ला करतूत अनिकी,
0: आपे जाने अपने जी की,
1: आप साच तारी सब साच,
0: पोत पोत अपन संग्राज,
1: ताकि गदमित कहीं न जाए,
0: दूसर हुए ता सो जी पाए,
1: इसका किया सब परवान,
0: गुर प्रसाद नानक हो जान,
1: जो जाने ती सदा सुख होए,
0: आप मिलाए लय प्रभ सोए,
1: ओ तनवंत कनवंत पतवंत,
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
1: तन तन तन जन आया,
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया,
1: जन आवन का ए सुभाओ,
0: जन कै संग चिता वै नाओ,
1: आप मुक्त मुक्त करे।

0: उपदेश
1: पार ब्रह्म नगट कर पेख
0: आसा सिमरह गोबिंद
1: मान अंतर के उत्तरा चंद
0: आस अनित त्याग तरंग
1: संत जना के धोर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साध संग अगन सागर तरह
0: हर धन के भर लेहु भंडार
1: नानक गुरपुर नमस्कार
0: कुशल सहज आनंद।

0: तुद भाव साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: हथ पे पानी धुत उत सोखे
0: मोत पलीती कपड़ होए जैसा बोण गैया ओ तोए
1: भरिया मत

0: गुंजत गोड़ गजान के सुंदर हंसत ही है राज हजारे।
1: भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे।
0: श्री पद श्री भगवान।

0: कोई अगर ना त्याओ
1: जो बर चाहो तो तुम से पाओ
0: सेवक सिख हमारे तारियन
1: चौन चौन सत्तर हमारे मारिया
0: हाथ दे मुझे अभरिय
1: मन का त्रास नरिया
0: जो सदा हमारे पश्चा
1: सरिया तो जो करिय रक्षा
0: लो मोहे रखन हारे
1: साहेब संत सहाय।

0: करपान अनुमानत
1: महामोड़ काज भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा सिर
1: निरंकार का जीनत न पैव
0: आप अपनी बुद्ध है जेती
1: बारनत पहन पहन तह जेती
0: तुम्हारा लखा न जाए पसारा
1: कह बद सजा प्रथम संसारा
0: के रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग भयो राव कहे भूपा
0: जिर स्थित चकीनी
1: उद भोज खान बहुत रज दीनी
0: कहो फूल राजा है बैठा
1: कहो सिमट भयो शंकर अकैठा
0: सिट दिखाए अचंभव
1: आज जुगा स्वरूप से अम्भव।

0: पहुंचे नाही मनसा सच समाणी
1: जन मरतन जिने खटया भले से बन जा रे
0: नानक जिन मन निर्मल सदा रहे करनाले
1: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवा होवा सा सन्मुख सिख कोई जी हो रहे गुरनाले
0: गुर के चन हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले
1: आप छाड सदा रहे परण गुर बिनावर न जाना कोए
0: नानक संतो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरते वे मुख होवा बिन सतगुर मुक्त न पावा
0: मुक्त न उड़ते कोई पुछ वे किया जाए
1: अनेक जूनी भर में आवा बिन सतगुर मुक्त न पाए
0: मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए
1: कहा नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए
0: सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।

श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राये श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ ने तो आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाए दसा ही पातशाहियां दी जागदी ज्योत बाणी के बोहेथ चावर ताकत शत्र दे मालक सत

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जना मंचाओ सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधाणिया अनगाह पंखी पौंदिया लै नसा सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत
1: मंदन मन पवाए सोए पय करत नचे सब कोई नच नच हसे चलने से रोए उड़ना जाए सदना होए नचण कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी।

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हंदर्शन रूप पार तीर्थ नावर चापू जागर वास बहकार जोगी सुनते अवन जेते

सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सोए अगै जात न जोर है अगै जीव नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जना कुत पाया।

पुस्तक संध्यावादं सिर बुझ पूज बगल समादं झूठ सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक ललाटंग धोती वस्त्र कपाटंग जे जान ब्रह्म कर्म सब होकर निश्चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावै बिन सतगुर बट न पावे पौड़ी।

0: साहिब से की हुक्म ना चले कही बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
1: नाले आने दोस्ती वडारू सियों ने पानी अंदर लीक जो तिसदा था उना थे

राजान पानान पान देवान देव उपमा महान सदगुरु जागत ज्योत चवर शतर और तख्त के मालक वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जीवड़ वर्ण कोए सच्ची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मोख द्वार जी के स्वरूप गुरता गद्दी विराजमान धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र विच सज बैठ के गुरु की गोद का आनंद लै रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जी हो वड़े भाग हन वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर साहां पात साहो निचल चौर छत होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है गुरु के दरबार दे विच नाम बाणी दी बरखा अमृत वाले तो हो रही है आप वड़भागी सतसंगिया ने गुरु महाराज की गोद का आनंद रास सुख ते निघ माणिया है अलाही बाणी का कीर्तन गुरु के सवारे हजूरी लागी जथे कर रहे सन कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ते अन्ना ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावै तिस जन दुख निकट नहीं आवै नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार जैसो गुरु उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार अलाही बाणी दा रस भिन्ना कीर्तन आप श्रवण कर रहे सी कीर्तन दा अखरी अर्थ है की रतन इस पवित्र दात दे सामने दुनिया दे हीरे रतन की चीज ने कुछ भी नहीं जगत जलंधर उतारन वास्ते सचे पातशाह गुरु नानक देव जी श्री सुल्तानपुर लोधी तो वैसाखी वाले दिन भाई मरदाना जी नाल लै लिया कीर्तन दी शांत धुना दे नाल जगत जलंधर उठारिया जीवन उतारिया और नाम दा छट्टा मारिया धन गुरु नानक देव जी ने आतश दुनिया खुनक नाम खुदाया आतश दा अर्थ है अग फारसी का अखर है सत्संगियो सो आतश मतलब है अग ते खुनक नाम खुदाया खुनक का अर्थ है ठंडा ठंडा नाम है ते संसार दे विच वकारां दी ईरखा दी अग है आतश आम आप सुनते हाँ कि गुरपुरब होवे महाराज सच्चे पातशाह जी का ते आतशबाजी आप करते हैं आतश का अर्थ हों अग ते बाजी का अर्थ हों खेड अग की खेड पटाके चलने हवाइया फुटनिया आदक समझे आतशबाजी आतश परशियन का शब्द है अग ते बाजी भी परशियन का शब्द है जिसका मतलब है कि खेड ये ख्याल करना आतशबाजी का अर्थ है अग की खेड सो आतश दुनिया खुनक नाम खुदाया दुनिया सड़दी है बलदी है तो ठंडक देने वाला वायु का नाम है कल ताती ठंडा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ सो एक आप सारे गुरु चरण च हाजरी लवा लीए प्यार न सारी संगत बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह और गुरु महाराज की बाणी के नाल जुड़ी एक सारी संगत प्यार नाल गायो

साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी दे वल इशारा किया, गंगा जीओ जेकर तुसी गुरु नानक दे दर की खुशी लैनी चाहते हो, गुरु नानक दे दर तो कुछ पाना चाहते हो, तो फिर गुरु नानक दे दर के सिख नूं प्रसाद छका के आओ। माता जी ने बहुत तरह के पकवान तैयार किए, पकवान तैयार करके बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी वल तुर पाए।

हरवसना सच्चे तख्त रचा बैसन को जाए। इस वीक इस हफ्ते सिख पंथ के महान केंद्र अस्थान श्री दरबार साहब जी अमृतसर, श्री अकाल तख्त साहब जी तिना दे नीह पत्थर रखने की खुशी दे विच, ते अकाल तख्त साहिब श्री गुरु